0: 거라. 내라 이가리 짜리라 너 못 받겠죠. 안 그래지 거 가를 퍼라. 이 나니 띠미따 뽀에리 빠따리 단따이 말라우니 애들이 나 집어넣고 소마라 나가래. 아웅다이 나 접하는 길이 날씨니 저거라 라이치 슈크맨 시그릿 라이 차이니 셜라이 유강 버리고 고차시 빨루 조라 카타이데 우마라 이나니 띠미따 뽀에리 빠따리 단따이 말라우니 애들이 아프나 지만고 소마라 나가래 아웅다이 나 접한 길이 많이 아플래? 울리 많이 예 바부 퍼키 떠라이 시팔루 저 한쭈 밤을 떠라이 예 무르카 떠또 서바이 비타라 먹바타 걸쳐 시키나 바람바라 바타라 자오시 아와서리가 차지 마르누 저 떠이래 나이 떠파차지 만에 울리 담기 진짜
1: 예 라간 순이 대우 샷대 마이마 비타라 걸쭈야 Sateide karikiriti anterahane jani ninu sabta. Dharmai purvaka rajya palana gari gajeti raja ani. Sandan keinau dasa daiti rahane atanta digdari bani. एक दिन सामु भायेरा नारी निर्पाकी यो बिंती घर चिंता दुखी छौ महाराजा हामी बहुतै संतन न हुँदा मा सुन्नुहोस् गुरुका गाएर आइले कुन कर्मले यो गरी छोरो जन्म न जान्छ पूर्ण जुनीको सम्पूर्ण बाधारी सन्तान देखि रहित भएर रहँदा भन्छन् अपुत्री पनि मर्दामा पनि पिण्ड पानी नमिलाने छुट्नेछ स्वर्गाई पनि यस्तो धेरा बिलाप गरेर दुखी भाइ रुइन्ती रानी अनि सम्झाइकन रानीलाई सब बात उठेती राजा पनि पहुँची आश्रममा वशिष्ठ मुनिका सङ्गमा सुझाए तहाँ ए सर्वज्ञ गुरु कसो गरी हुनन् छोरा मलाई सन्तान त तिमीलाई छैन निरपति यस्तो बताए तर छोराको मुखसम्म हेर्नु छ भने एउटा प्रतिज्ञा गर केही बालक यज्ञमा बलि गरी हुन्छौ भने त्यो गरी होला पुत्र असल उनै बरु नको हुँदैन दोस्रो गरी राजाले मनमा विचार गरिदिए यसै कसरी फिरूं छोराको मुख हेरी पितृ ऋण त छुट्नेछ मेरो बरु यस्तो धेर बिलाप गरेर दुखी भई रुन्ती रानी अनि सम्झाई सब रानीलाई सब बात उठेती राजा पनि पहुँची आश्रममा वशिष्ठ मुनिका सङ्गमा सुझाए तहाँ हे सर्वज्ञ गुरु कसो गरी हुनन् छोरा मलाई दुखी ब्राह्मण कोही एक घरमा थिए दलित्री अति थिए बालक तिन पुत्र उनका आफू दुई दम्पति सल्लाह

0: गए भने हेर्दा म कालिन्दीका किनारमा नुहाउन गर्छ सबैलाई।
1: दुर्गा प्रसाद सेवाकोटि कालिन्चोक साथ सुनखानी सुनसा सुदामा की नारी करछ दिन भारी विपत्तिले पति छे जाऊ विनती गर चिन्ता पिडरले गुरु देवता राजा अरू पनि भला मान्छका निदान खाली है बन्छन् कहिन्छ ज्योतिषमा देऊ केही सौगर मन देउत चङ्गा गरिकन मुझे बारी का हरिषित मुलाकात करने इच्छा वर्तन में विचार मुझे तंबू जमा कर दी सही तंबू बोली गए प्रयोजित गपू के दल का मा
2: नारायण
1: जन्म बालक।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: ये चंगी ए है साथी संगी साइलो ये दिन बढ़दाई सा।
1: मेरो नाम झलक माया नर्की, मेरो घर वडा नम्बर 7 भदौरे कालिन्चोक गाउँपालिका।

0: तिला चमालाय डाटे तिला
1: रे गो लागताया रे बाना गो
2: साइड पे बसून दे उधर तो देख की साइड
0: हां

बिराना देश में रोई रोई मरे पानी नारो बने को थारो बदल को गेरो कोई ता था ना मेरो नारो बने को थारो।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

छैन आउने जाने पाइन खबर पनि माइती छेउ के घर माइती छेउ के घर भयो धेरै दिन भगा छैन किन माइती छेउ के घर।

0: नमस्ते, मेरो नाम सुभद्रा थापा हो, वडा नम्बर 3 हो, बुलुङ गाविस।
1: मेरो नाम वडा नम्बर 8 लादुक।
2: मेरो नाम नारायण कुमारी खत्री, म वडा नम्बर 8 मल्दुङबाट आएको।
3: नाम पम्फा ओली, लादु गाविस वडा नम्बर 8 मल्दुङ।
4: लादु गाविस वडा नम्बर 8, मेरो नाम चाहिँ मनमाया गरी।
5: नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ राधिका ओली, लादुक 8 मल्दुङ।
6: मेरो नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी ओली, वडा नम्बर 8 मल्दुङ।
7: मेरो नमस्कार, रिता कार्की हो नाम मेरो, लादु गाविस वडा नम्बर 8।
8: मेरो नाम रमा कार्की, लादु गाविस वडा नम्बर 8।

बना बना बलाय मेरो पाना बलाय मेरो पाना यो रानी ले खेलने दस उबे कोडी लगाते गाये पाते काटे गाये पाते जिंदगी को छैन।

के गनो लारी बिर सौ का सगारी हर मीना बाजा दम डेरा पटुकी फुको जीव मेरो सुका माया रे दालाई समझेरो भन न भन बाला मेरो पना माया रे दालाई समझेरो से कालो काल बादलुले पेटैरे कालो दर्जाले ए बहिनी रादम पनि छैन बादा पेटैरे कालो दर्जाले औ साथीले नहवै डाङ्गे

देवता मा दुखी कालीन चौकी माई कालीन चौकी माए मंचे दुखी रहे तो माई सुनी।

मेरे पिहारा ले ना ता समझे पानी ना ता समझे पाने मैं समझूला दिन को दिन छत पानी तला जे जे परला परला जे जे परला परला मैं समझूला दिन को दिन एक मुठी पराल को तो बड़ा

नमस्कार रेडियो सहिलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज म बदी प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुलाई 16 तारीख आषाढ़ 32 गते बिहीबार द्वितीय तिथि आज गुरु बृहस्पति पश्चिम में अस्तय होने अब श्रावण 24 गते पूर्व में उदय हुन्छ अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षेण कल्पयारी।

सहित वायु शरी हुन गया हनुमन्त सहित आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्की कन फेर रामचन्द्रका पासमा।